एक बार ही मिलती है ये जिंदगी, काम आना किसी के है एक बंदगी। रोने वालों को जो भी हंसा था रे, रोने वालों को जो भी हंसाता रहे, असली है।

ऐसे ही तो जरूरी है मीठे वचन, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है एक शमशान का, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है एक शमशान का।

जिंदगी का सफर ये सुहाना बने, छोड़ दे तू अगर सारे शिकवे गिले। जिंदगी का सफर ये सुहाना बने।

खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में, दास सच्चा वही तो है भगवान का। खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में, दास

कली बैठी हमें लेके आसार एक बारी मिल सजना जिंद अपनी मैं दीती है गवा एक बारी मिल सजना झूठ अंग साक सब झूठा संसारे झूठा संसारे रब नू विसार के झूठे नल कीता प्यार वे झूठे नल कीता प्यार वे रहियां खोटियां ते सच्चियां सुना एक बारी मिल सजना।

एक मंजर बिना बोले जो तू कहता उसे सुनता ही रहता हूँ। लिखे हैं मन ने बड़े यतन से तेरी महिमा में कुछ नगमे। सुने तुमने भी इस मन से जो तुमने ही लिखाए हैं। लिखे हैं मन ने पहाड़ों से निकल कर जल नदी कहती मेरे संग चल। चले हैं सब चले जाते

बड़े यतन से तेरी महिमा में कुछ नगमे सुने तुमने भी इस मन से जो तुमने ही लिखाए हैं लिखे जो मन ने। ये हरियाली भरी वादी ये फूलों से लदी।

एहसास करो ओ मेरी माँ है कंबदी, जद हवा चलेगी ठंडी तन नो चंबदी, एहसास

दुख सह लियो सिदक ना हारियो मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारियो मैं खड़ा उड़ीका अपने सरदारा नू मैं मिलना चाहुंदा अपने अजीत जुझार नू मैं खड़ा उड़ीका अपने सरदारा नू मैं मिलना चाहुंदा अपने अजीत जुझार नू मैं चारे पुत क्यों वारे जग विचारियो मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारियो मैं चारे पुत क्यों वारे जग

0: चल अड़िया हाथ फड़िया पा तुर चलिए चन दी सैर नू। चल अड़िया हाथ फड़िया पा तुर चलिए चन दी सैर नू।
1: मम्मी विशेष जी दी रचना चन दी सैर दे नाल ही असी इस काम्य फल दा इथे ही समाप्ति करने आ ते अगली काम्य फल तक हरमन सिंह नूं दिओ आग्या। हरमन सिंह वल्लों एक बार फिर सारे श्रोतियां शायरां नूं आदाब नमस्कार सत श्री अकाल कुदरत खैर करे अलविदा आमीन प्यारे दोस्तों।

अपने खातर दुनिया मर दी मिट दी आईए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाईए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाईए। चरखड़िया ते चढ़ना बंद बंद कटवाना बड़ा ही औखा है, सरबंस बार के धर्म निभाना बड़ा ही औखा है, मखमल छड़

अपने खातर दुनिया मर दी मिट दी आई ए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाई ए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाई ए।

0: एज है तां वो डिप्लोमा कर सकदा है, अगर वो एज ओरी 18 तक हैगी है तां वो बच्चा फिर पीडब्ल्यूडीज दे अंडर या फिर कोई भी इदा गवर्नमेंट पीएसयूज दे अंडर निकले हुए टेस्ट ने जेडे वो अप्लाई कर सकदा है, ओदी तैयारी नाल दी नाल करी जावे।
1: अच्छा जी,
0: बट जिवें आपां प्राइवेट सेक्टर दी गल करदे हां, जेकर बच्चे
1: हाँ
0: ने
1: जी,
0: प्राइवेट सेक्टर च आना है तां उहनूं बच्चे नूं थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज दे विच तेज होना पौगा, प्लस ओदे कम्युनिकेशन स्किल्स जेहड़े हैं बहुत मैटर करते हैं।
1: अच्छा एक मिनट में ये दसो भी जिहड़े वोकेशनल जिहड़े कोर्स होंदे ने ते आईटीआई, इन्हां दोनों दे खेत्र विच की फर्क हैगा?
0: वोकेशनल कोर्सेज जिहड़े के स्कूल्स दे दौरान बच्चे लै लैंदे आ, जिदा कटिंग सीविंग दे भी काफी हुंदे आ, या फिर इसे दे नाल मिलदे जुलदे काफी सारे हो जांदे, इलेक्ट्रिशियन वेल्ड इलेक्ट्रिशियन वगैरह वाले भी आ जांदे आ, तां उहनां दा फायदा इह हुंदा कि जिहड़े बच्चे आईटीआई ज्वाइन करना चाहुंदे आ
1: हाँ
0: उहनां दे
1: जी,
0: लई उह इक प्लेटफॉर्म इक बेस बन जांदे आ,
1: अच्छा जी,
0: उहनां नूं उहनां बारे पहलां ही नॉलेज हो जांदी है ना।
1: अच्छा जी,
0: ते जिहड़े बच्चिआं ने मान लो आईटीआई या फिर उद्योगिक खेतर दे विच जाणा नहीं है, या फिर
1: हाँ
0: उहनां
1: जी,
0: ने अगे ग्रेजुएशन करनी है या फिर हायर स्टडीज दे विच कुछ भी होर करना है, तां इहो जे बच्चिआं दे लई सिंपल अपना 10th तक या फिर 12th तक अपनी सिंपल स्टडी करन दे विच ही बेहतरी है उहनां दी।
1: अच्छा जी।
0: हां जी
1: मैडम साहिबाना जी, तुसीं बहुत वधिया जानकारी साडे स्रोतों दे नाल सांझी कीती, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद।
0: धन्नवाद जी,
1: हाँ
0: थैंक
1: जी,
0: यू
1: स्रोतों दा असीं धन्नवाद करते हैं जिन्होंने साडे प्रोग्राम नूं बड़े प्यार नाल सुनिया,
0: जी।
1: ते अगली बार फिर मिलांगे प्रोग्राम सिक्ख्या ते रुजगार दे विच। तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत धन्नवाद। मैं सुखबीर जोगा अते दुआबा रेडिया वल्लों शुक्रिया जी।

ऐसे ही तो जरूरी है मीठे वचन, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है एक।